बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

संडे है यानी अलार्म से थोड़ी राहत, भाग दौड़ से थोड़ा सा सुकून, अपने लिए थोड़ा सा वक्त। ऐसे ही एक रविवार की सुबह में आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ मैं। आपने ट्यून किया है 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक, जहाँ आप सुन सकेंगे अभी कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप के चैनल के साथ। 10:11 और 55 सेकंड समय हो रहा है, ठीक 10:02 से हमारे ये कार्यक्रम शुरू होता है और जारी रहता है कितने बजे तक? जी हाँ, जारी रहता है हमारे ये कार्यक्रम आप सभी सुनने वालों के लिए 11 बजे तक, यानी सुबह के 11 बजे तक। तो चलिए, सफर की शुरुआत हो चुकी है। आपने ट्यून किया 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक, जहां पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह में, आज की सुहानी से सुबह में, यानी रविवार की सुहानी से सुबह में कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। मैं हूं देव जानी, आप सभी सुनने वालों के साथ।

चलिए अब नजर डालते हैं आज के मौसम पर। अगर आज आप घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो छाता साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोलकाता और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान पर बादलों का डेरा रहने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। तापमान लगभग 32 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। यानी मौसम रहेगा सुहाना, लेकिन बारिश कभी भी दस्तक दे सकती है। और अब समुद्र की ओर रुख करने वाले हमारे मछुआरे भाइयों के लिए एक जरूरी सूचना। 5 जुलाई से 7 जुलाई के बीच पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा तट के समुद्री क्षेत्र में तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसलिए इस अवधि में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल मौसम से जुड़ी यही अहम जानकारी। सुरक्षित रहें, मौसम के अपडेट पर नजर बनाए रखें और हमें सुनते रहिए 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक पर। ये है नॉनस्टॉप गपशप। मैं हूं देवजानी, आप सभी सुनने वालों के साथ।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: एक चुटकी नुस्खे।
2: जी हाँ, एक चुटके नुस्खे, यानी हर सुबह हम नॉनस्टॉप गपशप के तहत आपके लिए कुछ लाइफस्टाइल हैक्स लेकर के आते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना दे। बरसात में चश्मे पर धुंध और दाग जल्दी जम जाते हैं, खास करके जब आप एसी एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं तो हवा में नमी के कारण चश्मे में धुंध बहुत जल्दी लग जाती है। और अगर आपके चश्मे का पावर बहुत हाई है तो चश्मे को निकाल के थोड़ी देर के लिए चलना भी आपके लिए मुश्किल लग सकता है। और किसी भी आम कपड़े से चश्मे को साफ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे चश्मे पर स्क्रैचेस से, यानी उसके उसके उसका जो शीशा होता है, उसका जो ग्लास होता है, उस पर स्क्रैचेस पड़ने का डर होता है। तो ऐसे में चश्मा जो है आपका, उसे साफ करने के बाद उस पर माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्की सी साबुन के पानी की परत लगाकर फिर से पोंछ दें। इससे शीशों पर धुंध कुछ हद तक कम जमती है और वे ज्यादा देर तक साफ रहते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम ज्यादा देर तक साफ सुथरा तंदुरुस्त और फ्रेश रखना चाहते हैं। अगर अदरक जल्दी सूख जाते हैं तो उसे पेपर टॉवल में लपेटकर एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में रखें। इससे वो कई दिनों तक ताज़ा बनी रहती है। और जब आप चाय में डालने के लिए या अदरक वाली चाय बनाने के लिए अदरक ढूंढ रहे होंगे तो उसे देखकर आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो तरोताज़ा रहेगा। मोबाइल के स्पीकर पर धूल जमा हो जाए तो किसी मुलायम सूखे ब्रश से बहुत हल्के हाथ से साफ करें। नुकीली चीज या पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यही टोटका आप अपने मोबाइल के कैमरे के लेंस के लिए भी अपनाएं। किचन के सिंक या कटिंग बोर्ड से अगर बदबू आ रही हो तो आधा नींबू रगड़कर 2 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। इससे ताजगी भी आएगी और बदबू भी कम होगी। आज छुट्टी का दिन है तो एक छोटा सा नुस्खा अपनी सेहत के लिए भी अपनाइए। घर के किसी एक कोने की सफाई या पौधों की देखभाल में सिर्फ 15 मिनट लगाइए। हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि भी होगी, मन भी तरोताजा रहेगा और घर भी खिल उठेगा।
1: एक चुटकी नुस्खे।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

Батьки Дині. रेनबो दिल से दिल तक पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। मैं हूं देवजानी आप सभी सुनने वालों के साथ। और ये समय है आज के दिन का, यानी कि इतिहास के पन्नों में झांकने का। क्या करते हैं हम आज के दिन के इस सेगमेंट में? जी हाँ, कहते हैं इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं होता, बल्कि आने वाले कल की सीख भी देता है। और हर तारीख अपने साथ कुछ यादें, कुछ उपलब्धियां और कुछ प्रेरक किस्से समेटे रहती है। आइए आज की तारीख से जुड़े उन खास पलों से रूबरू होते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी अलग पहचान बनाई। तो पेश है इतिहास में आज का दिन।

1687 में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी द्वारा आइजक न्यूटन की महान कृति प्रिंसिपिया प्रकाशित की गई थी आज के ही दिन, जिसमें उन्होंने गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। 1811 वेनेजुएला की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी आज के ही दिन, यानी 5 जुलाई 1811। जी हाँ, 1951 में बेल लैब्स में जंक्शन ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, जिसका आविष्कार विलियम शॉकली, जॉन बॉर्डिन और वॉल्टर हासल ब्रेटन ने किया, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1956 में मिला था। 1975 में पुर्तगाली शासन के 500 वर्षों के बाद केप वर्डे द्वीप समूह को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जी हाँ, वही काबो वर्डे या केप वर्डे जिन्होंने इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में धमाल मचा दिया। 1983 में एक महिला ने मस्तिष्क मृत्यु के 84 दिन बाद बच्चे को जन्म दिया। 1986 में नैन्सी रीगन ने जीर्णोद्धार के बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फिर से खोलने के लिए लाल, सफेद और नीले रंग का रिबन काटा। 2012 में लंदन में यूरोप की सबसे ऊंची इमारत दशार्ड का उद्घाटन हुआ, जिसकी ऊंचाई 309.6 मीटर यानी 1016 फीट है। 2019 में प्राचीन इराकी शहर बेबीलोन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यानी वर्ल्ड हेरिटेज। 2000

0: कुकीज दुनिया की सबसे पुरानी कलाकृतियों में से एक 51,000 साल पुरानी हिरण की हड्डी जिसे नियंडरथल द्वारा तराशा गया था जर्मनी के हार्ज पहाड़ों के बीच खोजे जाने की घोषणा की गई। 2025 फ्रांस के पेरिस में सीन नदी पर 3 नए तैराकी स्थल जनता के लिए खोले गए जो प्रदूषण और नौवहन संबंधी चिंताओं के कारण 1923 में प्रतिबंधित होने के बाद पहली बार हुआ है। आज जयंती है भारतीय गायक संगीतज्ञ और दार्शनिक हजरत इनायत खान की जो सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जन्म ब्रिटिश भारत के वडोदरा में हुआ था। आज अपना जन्मदिन मना रही हैं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। 2019 में महिला एकल विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 2016 में ओलंपिक रजत पदक, 2020 में कांस्य पदक की विजेता पीवी सिंधु जिनका जन्म हैदराबाद में 1995 में हुआ था। पीवी सिंधु के साथ साथ आप सभी सुनने वालों को हमारी ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: आज के दिन

কলকাতা কালচার। एक सौ सात एफ एम रेनबो दिल से दिल तक पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप देवचानी के साथ और ये समय है कोलकाता कल्चर का, यानी कि शहर कोलकाता में आज क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं जहां पे आप शामिल हो सकते हैं या फिर अपने वीकेंड को और सजा सकते हैं, सवार सकते हैं इन इवेंट्स में शामिल होकर। सबसे पहले आइए रुख करते हैं एक संगीत कार्यक्रम की ओर, यानी एक इवेंट एक ऐसा है जो एक म्यूजिकल इवेंट है, महेश काले अभंगवारी। जी हाँ, सोलफुल साउंड ऑफ भक्ति, द टाइमलेस डिवोशनल एसेंस ऑफ मराठी अभंग्स, ये इवेंट है इंडिया के नेशनल अवार्ड विनिंग वोकलिस्ट महेश काले के साथ जुड़ने का और इस खूबसूरत संगीत में शाम का आनंद लेने का। शाम के 5:30 से ये तकरीबन 2 घंटे 30 मिनट का कार्यक्रम है, शहर के ही एक ऑडिटोरियम में है। इसके साथ ही साथ हम दो हमारे दो डुओ बाय विक्टर एंड प्रणय, इस नाम से एक स्टैंड अप कॉमेडी शो है जहां दो कॉमेडियंस विक्टर एंड प्रणय आपको डबल द डिलाइट ट्वाइस द फन और केओस लेकर आएंगे आपके लिए, आपको आपका मनोरंजन करने के लिए। ये कार्यक्रम भी आज शाम है और शहर के ही एक क्लब में है। इसके साथ ही साथ मेड इन बंगाल स्टैंड अप कॉमेडी बाय रोहित मिश्रा, आज शाम 5:00 एक घंटे का ये कार्यक्रम है, लेट नाइट कॉमेडी शो। लेट नाइट कॉमेडी शो यहाँ पर कोलकाता के बेस्ट स्टैंड अप सीन के बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस एक साथ होने वाले हैं लेट नाइट शोकेस करने के लिए रात के 9:00 और ये 1 घंटे 15 मिनट का शो रहेगा। इसके साथ ही साथ बांग्ला कॉमेडी नाइट नाम से भी एक शो है शाम के 6:00 आप सभी सुनने वालों के लिए शहर के ही एक ऑडिटोरियम में। जरूरी नहीं है कि आपको हंसना ही है जबरदस्ती या किसी और तरीके से, वैसे हंसना स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा होता है। मुझे थोड़े से समय के बाद लगा जैसे मैं आपको जबरदस्ती हंसने को मजबूर कर रही हूँ एक के बाद ही कॉमेडी शो। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी भी शो का हिस्सा बनना पड़ेगा, पार्ट बनना पड़ेगा।

0: आपके अपने रविवार को अच्छे से बिताने के लिए। जरूरी सिर्फ इतना है कि आप जो भी करें वो आपको अच्छा लगे, आप अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, खुद के साथ समय बिताइए, पर जो करें वो आपको अच्छा लगे, आपको अपना मच वेटेड मी टाइम दिलाए, क्योंकि कल ही सोमवार का दिन है और इस मंडे ब्लूज से निपटने के लिए रविवार के दिन को अपने आप को रिचार्ज करना बेहद जरूरी होता है।
1: कोलकाता कल्चर।
0: तो चलिए बस देखते ही देखते 10:55 समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में। आज के इस एपिसोड ऑफ नॉन स्टॉप गपशप को यहीं खत्म करना पड़ेगा। एक आखिरी गीत के उस पार मैं आप सभी से इजाजत लूंगी। दोबारा अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं 100.5 FM गोल्ड खरा सोना, जहां पर मैं रहूंगी 11:10 से आप सभी सुनने वालों के साथ लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल थाम कर बैठने वाले इस बेहद खास और धमाकेदार सफर में। क्योंकि जिंदगी में जब तक कुछ एक्स्ट्रा मजा ना हो तब तक बात बनती नहीं, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सफर जहां होगा मनोरंजन का ओवरडोज, सुरों की बौछार और कभी ना भूलने वाली यादें, यानी कि आज की जो शाम है उसको बेहद खास और यादगार बनाने के लिए हम पेश करने जा रहे हैं महा मनोरंजन का स्पेशल डोज, यानी कि कार्यक्रम 3 का तड़का। और आज मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, आप सब अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जोश, जुनून और जबरदस्त परफॉर्मेंस का ये सैलाब अब सीधे आपके दिलों पर दस्तक देने जा रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी आप जो ये गीत सुन रहे थे, सुजैन की आवाज में फिल्म आवारापन से, जी हाँ, यानी कि ऐसा कहूँ कि 3 के तड़के की तो मजेदार यानी कि धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों, गीतों और बातों का यह सिलसिला चलने वाला है ठीक शाम के 4 बजे तक। तो दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए, साथ रहिए, बने रहिए कार्यक्रम 3 का तड़का में अपनी दोस्त ज्योति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। और सिर्फ गीतों के साथ मैं आप लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ढेर सारी बातें, यानी कि बॉलीवुड की कुछ गपशप लेकर। तो दोस्तों, बातों और गीतों का सिलसिला जैसे कि मैंने कहा कि ठीक शाम के 4 बजे तक चलने वाला है, तो आप अपने रेडियो ट्यून को कहीं और मत घुमाइए, जी हाँ, बस यूं ही मेरे साथ बनिए। और चलते हैं अब अगले गीत की ओर।

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: तो दोस्तों आज मैं आप सभी को भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना के बारे में बताने जा रही हूं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। साथियों, जीवन अनमोल है, लेकिन जीवन अनिश्चित भी। किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है घर का कमाने वाला व्यक्ति। अगर किसी कारणवश उसकी असमय मृत्यु हो जाए तो परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे ही संकट के समय परिवार को सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 9 मई सन 2015 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। यह योजना खास तौर पर आम नागरिकों को कम प्रीमियम में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसके परिवार या नामांकित व्यक्ति को 2,00,000 रुपए की बीमा राशि दी जाती है। यह बीमा सुरक्षा पूरे एक वर्ष के लिए होती है और हर साल स्वतः नवीनीकरण किया जा सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है इसका कम प्रीमियम। इसमें केवल 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होता है, जो सीधे बैंक खाते से स्वतः कट जाता है, यानी साल भर की सुरक्षा, वो भी बहुत कम खर्च में। इस योजना का लाभ वे सभी लोग उठा सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो और जिनका बैंक खाता हो। बैंक खाता होना आवश्यक है, क्योंकि बीमा राशि और प्रीमियम दोनों बैंक के माध्यम से ही संचालित होते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को किसी भी सरकारी या निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जनधन खाते के माध्यम से लिया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल है। बैंक जाकर या बैंक की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना का

उद्देश्य केवल बीमा देना नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि किसी परिवार को अचानक आई विपत्ति के कारण आर्थिक रूप से टूटना ना पड़े। आज के समय में जब जीवन में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है ऐसे में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर सामने आती है। यह योजना गरीब मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ नहीं लिया तो अवश्य इस योजना से जुड़े और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें। दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 3:17 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का भी ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो चलिए दोस्तों बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

दोस्तों, अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म जी हाँ रब ने बना दी जोड़ी से, और सुनिधि चौहान और लव झुंझिया की आवाज में, और इस गीत के बोल लिखे थे जयदीप ने, और संगीत से पिरोया था सलीम सुलेमान ने। और इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 3:23। अब बॉलीवुड की खबरों की अगर रुक करें दोस्तों, तो बता दूं, जी हाँ, आमिर खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात दिल के फैसले की हो तो वो सबसे हट के ही सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आमिर खान और उनके लॉन्ग टाइम पार्टनर गौरी स्प्रेट अब हमेशा हमेशा के लिए जी एक दूजे के हो चुके हैं। बिल्कुल मुंबई के बांद्रा वाले घर में बेहद सादगी से हुई इस प्राइवेट रजिस्टर्ड मैरिज ने सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, इसी प्रकार की और भी कई मैं खबरें लेकर आई हूँ, जी हाँ, बॉलीवुड की गपशप आप सभी के साथ साझा करने के लिए, यानी कि बातों और गीतों का जो ये सिलसिला है जो ठीक चलने वाले शाम के 4 बजे तक। तो दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए और साथ बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं दोस्तों अब अगले गीत की ओर।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

दोस्तों, मौसम में घुली है थोड़ी सी ठंडक और सिनेमा घरों में लगी है फुल ऑन गर्माहट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की सबसे बड़ी रिलीज यानी कि फिल्म अल्फा की, जो इस 3 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। आलिया भट्ट और सरवरी की स्क्रीन पर ऐसा तगड़ा एक्शन और स्वैग दिखाया गया है कि देखने वालों के तो होश उड़ गए हैं। ऊपर से बॉबी देओल और ऋतिक रोशन का वो सीक्रेट कैमियो, यानी कि भाई थिएटर जरूर तालियों से तो गूंजी उठे होंगे। जी हाँ, तो अगर आपने अब तक ये धमाकेदार एक्शन नहीं देखा तो अपनी टिकट बुक कराइए और हाँ, वीकेंड का मजा दुगना कीजिए, क्योंकि बॉलीवुड के ऐसे ही कड़क और मसालेदार गॉसिप्स को लेकर सुनते रहिए हमारा यह बेहद खास शो यानी कि कार्यक्रम 3 का तड़का। तो चलिए दोस्तों, बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: अरे ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.

0: This one.
1: What about it?
0: Deserves a hug.
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

बिल्कुल दोस्तों, ये कार्यक्रम जो है प्यार देने और लेना का ही तो नाम है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जब तक कुछ अलग, कुछ नया और कुछ कड़क ना हो, तब तक जीने का असली मजा नहीं आता। और आपके इसी मजे को दो गुना करने का नाम है हमारा ये शो। यहाँ आपको मिलता है एंटरटेनमेंट का एक ऐसा कंप्लीट पैकेज, जहाँ रोजाना दिल छू लेने वाली बातें भी होती है, गानों की मस्ती भी होती है और दुनिया भर की चटपटी खबरें भी होती हैं। अगर सीधे शब्दों में कहे तो हमारी कोशिश बस इतनी सी है कि जब आप इस शो से जुड़े तो हम अपनी सारी टेंशन भूलकर बस मुस्कुराते रहे और दिल थाम कर जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मनोरंजन का असली स्वाद सिर्फ और सिर्फ इसी मंच पर मिलेगा। जी हाँ, इस कार्यक्रम में जिसका नाम है 3 का तड़का। तो दोस्तों, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी शाम को यादगार बनाते रहिए। जी हाँ, इसी आशा के साथ अब चलते हैं अगले गीत की ओर। वैसे एक बार बता दो दोस्तों कि स्टूडियो में समय हो चला है 3:47 और 5 सेकंड और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर टीम का

और जब वक्त अपनों के साथ गुजर रहा हो तो पता ही नहीं चलता। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब आज के सफर को यहीं पर थामने का समय आ गया है। उम्मीद है आज के ये सारे तराने आपके दिलों को छू गए होंगे। जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा है, इसे खुलकर जिए, अपनों का ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ठीक इसी समय इसी जगह कुछ और नई कहानियां, ढेर सारी मस्ती और मनोरंजन के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा शो 3 का तड़का में।

लेकिन आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ठीक 5:15 पर, जी हाँ, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगी कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स, यहाँ नहीं 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। पर दोस्तों जाते जाते बस एक और बात कहूँगी कि अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ, तो यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: यादों की बारात।
2: गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज हूँ मैं आप सभी के साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर कार्यक्रम यादों की बारात सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं छायालोक और अब वक्त है उस सफर का जहाँ हर पड़ाव पर सजी है सिनेमा की सुनहरी यादें। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास सेगमेंट यानी कि यादों की बारात में। हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे अपने साथ अनगिनत यादें, मधुर गीत, दमदार कहानियां और बेहतरीन अभिनय की छाप लेकर आती है। और आज है 5 जुलाई और इस दिन भी एक ऐसी खास तारीख है, क्योंकि इसी दिन अलग अलग वर्षों में कुछ ऐसे ही फिल्में बड़े पर्दे पर आई जिन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई। तो दोस्तों, आज की इस यादों

करीब आरात में हम बात करेंगे तीन यादगार फिल्मों की, यानी कि पहली फिल्म दरार, जिसने रिश्तों और मनोभावों की एक अलग कहानी कही। हमराज, जिसने रोमांस और सस्पेंस का शानदार संगम पेश किया। और लुटेरा, जिसने अपनी संवेदनशील कहानी, खूबसूरत संगीत और बेहतरीन सिनेमाई प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। तो आइए दोस्तों, यादों की इस खूबसूरत कारवा के साथ चलते हैं उन फिल्मों की ओर जिन्होंने 5 जुलाई को हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक खास पहचान बनाई। तो शुरू करते हैं आज की यादों की बारात।

5 जुलाई और इसी दिन साल 1996 में बड़े पर्दे पर आई थी एक ऐसी फिल्म जिसने अपने अलग विषय और दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा। फिल्म का नाम था दरार। जी हाँ, 90 के दशक में जब अधिकतर फिल्मों में प्रेम, पारिवारिक रिश्ते और एक्शन का बोलबाला था, तब दरार ने एक ऐसे विषय को सामने रखा जिस पर उस समय बहुत कम फिल्में बनी थी, क्योंकि यह फिल्म बताती है कि रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब उनमें प्यार के साथ सम्मान और भरोसा भी हो। और दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी रिश्ते को सिर्फ बाहर से नहीं दिखाती, बल्कि उसके भीतर चल रहे भावनात्मक संघर्ष को भी सामने लाती है। क्योंकि इस कहानी की जो मुख्य किरदार है, जी हाँ, कहानी शुरू होती है प्रिया नाम की एक सरल, शिक्षित और खुश मिजाज युवती से। हर लड़की की तरह उसके भी अपने सपने हैं, एक ऐसा घर जहाँ प्यार हो, अपनापन हो और सम्मान हो। लेकिन उसकी शादी होती है विक्रम से और शादी के कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि उसके पति का स्वभाव वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा था, क्योंकि वो बेहद ही गुस्सैल, शक करने वाला और दूसरों पर अपना अधिकार जमाने वाला इंसान था। और फिल्म यहीं से गंभीर मोड़ ले लेती है और दर्शक महसूस करते हैं

ये मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना किसी भी इंसान के जीवन को कितना कठिन बना देती है। लेकिन दोस्तों साथ ये फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रिया जिस प्रकार हर दिन डर के साए में जीती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। परिस्थितियां उसे टूटने की तोड़ने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर जीने और सम्मान के साथ जीवन बिताने की इच्छा रहती है। और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसे यह एहसास दिलाता है कि जीवन में सम्मान और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। और यहीं से कहानी उम्मीद की नई किरण लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन क्या अतीत इतनी आसानी से पीछा छोड़ देता है, यही जानने के लिए दर्शक पूरी फिल्म से जुड़े रहते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इसकी संगीत की बात करूं तो बिल्कुल इस फिल्म के कई गीत लोकप्रिय हुए थे। और खास बात यह थी कि जहां कहानी गंभीर थी वहां संगीत उसमें भावनात्मक संतुलन बनाए रखा। गीतों ने पात्रों की भावनाओं को और गहराई से दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। तो दोस्तों इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 7:15 और 40 सेकंड, यानी कि बातों और ये गीतों का सिलसिला चलने वाला है। जी हाँ, यादों की बारात का ये सिलसिला चलने वाला है ठीक रात के 8 बजे तक। और दोस्तों चलते हैं अगले गीत की ओर। जैसे कि मैंने बताया कि इस फिल्म के कई गीत लोकप्रिय हुए थे, तो चलिए इसी फिल्म से एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि आज शाम ठीक 7:30 से जी हम इसी चैनल पर आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की ऑफ ट्यूब द्विभाषी कमेंट्री, जी हाँ हिंदी और अंग्रेजी में। रोमांचक मुकाबले के हर चौके, हर छक्के और हर विकेट का जोश आपके लिए लेकर आएंगे हमारे कमेंटेटर्स। तो याद रखिए ठीक शाम के 7:30 से इसी चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगा आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की ऑफ ट्यूब द्विभाषी कमेंट्री। लेकिन हमारा प्रोग्राम, जी हाँ आप सुनेंगे हमारा नियमित कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर ऐप पर, यानी कि रात के ठीक 9 बजे तक। तो दोस्तों हमारे साथ जो है ये गीतों और बातों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है रात के ठीक 9 बजे तक न्यूज ऑन एयर ऐप पर। तो दोस्तों हम लोग बातें कर रहे थे, जी हाँ, फिल्म दरार के बारे में। जैसे कि दोस्तों हमने कहा कि अतीत, जो उसकी प्रिया की जो अतीत रहती है, क्या उसको आसानी से पीछा छोड़ देगी, और यही जानने के लिए दर्शक पूरी तरह से फिल्म से जुड़े रहते हैं। अगर दोस्तों अगर अभिनय की बात करें तो इस फिल्म का हर कलाकार, जी हाँ, अपने किरदार में पूरी तरह से रचा बसा दिखाई देता है। जूही चावला के रूप में बेहद संवेदनशील अभिनय किया, उनके चेहरे के भाव, उनकी खामोशी और उनका आत्मविश्वास, सब कुछ इस कदर इस किरदार को यादगार बना देता है। और ऋषि कपूर हमेशा की तरह सहज और प्रभावशाली लगे, उनका किरदार कहानी में भरोसे और सकारात्मक सोच का प्रतीक बनकर सामने आया। लेकिन सबसे अधिक चर्चा हुई अरबाज खान की, क्योंकि यह उनकी पहली फिल्म थी और पहली फिल्म में उन्होंने एक ऐसे नकारात्मक किरदार को निभाया कि दर्शक उन्हें देखकर सचमुच उस चरित्र से नफरत करने लगे। लेकिन किसी भी अभिनेता के लिए यही उसकी सफलता होती है कि दर्शक उसके निभाए किरदार को सच मानने लगे। तो दोस्तों अब्बास मस्तान की फिल्मों की पहचान हमेशा से रही है रोमांच, रहस्य और कहानी में अप्रत्याशित मोड़, और दरार फिल्म में भी उन्होंने भावनाओं और सस्पेंस को ऐसा संतुलन बनाया कि फिल्म के अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है। बिल्कुल, और फिल्म के गीत कहानी की भावनाओं के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। यही वजह है कि आज भी इसके कई गीत पुराने संगीत प्रेमियों की पसंद में शामिल है। तो दोस्तों हर अच्छी फिल्म अपने साथ कोई ना कोई संदेश भी छोड़ जाती है, और दरार फिल्म का ये संदेश भी बहुत स्पष्ट है कि रिश्ते कभी डर से नहीं चलते, रिश्ते विश्वास से चलते हैं। सम्मान, संवाद और अपनापन किसी भी परिवार की सबसे मजबूत नींव होती है। यह फिल्म यह भी बताती है कि कठिन परिस्थितियों में साहस बनाए रखना और सही निर्णय लेना ही जीवन को नई दिशा दे सकता है। शायद यही वजह है कि रिलीज के इतने दशक बाद भी दरार को याद किया जाता है। तो दोस्तों आज यादों की बारात में अभी हमने फिलहाल एक ही फिल्म के विषय में जाना है, जी हाँ दरार फिल्म के विषय में, जो एक ऐसी फिल्म थी जिसने अपने दमदार अभिनय, प्रभावशाली कहानी और संवेदनशील विषय के कारण हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे इस सफर में आगे और याद करेंगे 5 जुलाई को रिलीज हुई एक और यादगार फिल्म के बारे में। लेकिन फिलहाल आप सभी के लिए ये एक मधुर तराना।

लोग सुन रहे हैं और हमारे खास सेगमेंट यानी कि छह लोग के खास सेगमेंट यादों की बारात सुन रहे हैं। और आज 5 जुलाई की यादों के सफर में अगला पड़ाव है वर्ष 2002 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने अपने रोमांस, सस्पेंस और संगीत और शानदार अभिनय से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फिल्म का नाम है हमराज। यह वो दौर था जब रहस्य और रोमांस से भरपूर फिल्मों को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा था। ऐसे समय में आई हमराज ने प्यार, विश्वास और महत्वाकांक्षा और धोखे की कहानी को इतनी खूबसूरत अंदाज में पर्दे पर उतारा कि दर्शक अंत तक कहानी का अगला मोड़ जानने के लिए उत्सुक बने रहे। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है दो युवा कलाकारों से जो संगीत और मंच की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का सपना देखते हैं। सपनों को पूरा करने की चाह, सफलता की तलाश और बेहतर भविष्य की उम्मीद, इन्हीं भावनाओं के साथ कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। कहानी में एक अमीर उद्योगपति का प्रवेश होता है और यहीं से रिश्तों की दिशा बदलने लगती है। प्यार, विश्वास और महत्वाकांक्षा के बीच ऐसा खेल शुरू होता है जहां हर किरदार अपने अपने राज छिपाए हुए है। और अगर अभिनय की बात करें तो फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट रही। जी हाँ, जहां बॉबी देओल ने एक शांत, समझदार और संवेदनशील किरदार निभाया, उनका अभिनय कहानी के साथ और भी प्रभावशाली होता जाता है। वहीं अक्षय खन्ना ने अपने जटिल किरदार को इतने आत्मविश्वास से निभाया कि दर्शक उसके अभिनय की खूब सराहना करते हैं। उनके चेहरे के भाव और संवाद कहानी में रहस्य का रंग भर देते हैं। अमीषा पटेल ने भी अपनी भूमिका को बेहद खूबसूरती से निभाया और फिल्म में भावनात्मक संतुलन बनाए रखा। तो दोस्तों, हमराज का निर्देशन किया था सस्पेंस फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान ने। और इन फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत रही कि दर्शक अंत तक अंदाजा नहीं लगा पाते कि कहानी किस मोड़ पर जाएगी। हमराज भी इस शैली की एक बेहतरीन मिसाल है। तो चलिए दोस्तों, इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

तो सब बात करें संगीत की, तो फिल्म का संगीत था हिमेश रेशमिया का और साजिद वाजिद ने जबकि गीतों को अपनी आवाज़ों से सजाया था, जैसे कि सनम मेरे हमराज, बर्दाश्त नहीं कर सकता और दिल ने कर लिया था, जिसे अभी आप सुन रहे थे। उन गीतों को उस समय संगीत प्रेमियों की जुबान पर थे और आज भी जब ये गीत सुनाई देते हैं तो 2000 के दशक की सुनहरी यादें ताजा हो जाती है। तो दोस्तों, हमराज केवल एक रोमांटिक फिल्म नहीं, हमें एक यह भी सिखाती है कि रिश्तों की सबसे मजबूत नींव विश्वास होती है और जब लालच और धोखा रिश्तों के बीच आ जाते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। फिल्म यह भी बताती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, अंततः वही जीतती है। यही संदेश इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजक ही नहीं बल्कि यादगार भी बनाता है। तो दोस्तों, एक रोचक बात यह भी है कि 5 जुलाई 2002 को रिलीज हुई हमराज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की और इसके संगीत को भी कई पुरस्कार के लिए सराहा गया और आज रिलीज के 2 दशक से अधिक समय बाद भी यह फिल्म अपनी शानदार गीतों, रहस्य से भरी कहानी और बेहतरीन अभिनय के लिए याद की जाती है। तो दोस्तों, आज की यादों की बारात में हमने याद किया 5 जुलाई 2002 की रिलीज हुई फिल्म हमराज को भी, एक ऐसी फिल्म जिसने रोमांस, सस्पेंस और संगीत का बेहतरीन संगम पेश किया। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ेगा हमारा यह सफर और याद करेंगे 5 जुलाई को रिलीज हुई एक और खूबसूरत फिल्म। तब तक के लिए सुनते रहिए छाया लोग, जहां हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ताजगी का महसूस होता है हिंदी सिनेमा की सुनहरी यादों के साथ।

यादव के बारात में बारी है। 5 जुलाई 2013 को रिलीज हुई एक बेहद खूबसूरत और भावनाओं से भरपूर फिल्म लुटेरा की। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि भरोसे, पिछड़ने, पछतावे और उम्मीद की एक ऐसी दास्तान है जो धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। 1950 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी ने किया था। फिल्म में रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। दोनों कलाकारों ने अपने शांत, सहज और भावनात्मक अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म की कहानी एक रहस्यमय युवक और संवेदनशील युवती के इर्द गिर्द घूमती है और दोनों के बीच प्रेम पनपता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती है कि उनकी जिंदगी अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है और इसके बाद कहानी विश्वास, बिछड़ने और त्याग की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से सामने लाती है। तो दोस्तों, लुटेरा की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी है। बिना ज्यादा शोर शराबा की ये फिल्म अपनी कहानी, शानदार सिनेमेटोग्राफी और मधुर संगीत से दर्शकों का बांधे रखती है। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी ने दिया है और सवार लू और जिंदा हूँ यार तथा मन मर्जिया जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पसंद है। तो दोस्तों, 5 जुलाई को रिलीज हुई लुटेरा उन फिल्मों में शामिल है जो यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और एक दूसरे की खुशियों को समझने का भी नाम है। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर में हम सुनेंगे लुटेरा फिल्म के खूबसूरत गीत। फिर लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यादों की बारात का ये यादगार सफर, जी हाँ, यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन ठीक 8 बजे मैं नहीं, आप सभी की एक नई साथी यानी कि प्रीति मुरार का आपसे जुड़ेगी ठीक 8:02 में। जी हाँ, और अपनी दोस्त ज्योति को फिलहाल दीजिए इजाज़त। तो दोस्तों, आज की यादों की बारात में हमने 5 जुलाई को रिलीज हुई हिंदी सिनेमा की 3 यादगार फिल्में दरार, हमराज और लुटेरा की सुनहरी यादों को एक बार फिर ताज़ा किया। हर फिल्म ने अपने दौर में अपनी एक अलग पहचान बनाई और दर्शकों के दिलों में खास जगह हासिल की। तो दोस्तों, उम्मीद है सिनेमा के इस यादगार सफर ने आपको भी बीते दिनों की खूबसूरत यादों से रूबरू कराया होगा और इसी के साथ आज की ये विशेष सेगमेंट यानी कि यादों की बारात से मुझे दीजिए अनुमति। फिर मुलाकात होगी छायालोक के एक नए अंक में, जहां हम फिर मिलेंगे और लेकर आएंगे हिंदी सिनेमा के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प बातें, अनसुने किस्से और सदाबहार गीत। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। अपने और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सुनते रहिए अपना पसंदीदा यानी ये रेडियो चैनल 107 FM रेनबो। लेकिन दोस्तों, मैं तो जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ये कार्यक्रम जो है छायालोक का ये ठीक चलने वाला है रात के ठीक 9 बजे तक। मेरे बाद आप सभी के साथ जोर चलेंगी, जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्रीति मुरार का, और प्रीति मुरार का जुड़ेंगी आपकी फरमाइश लेकर, जी हाँ, जहाँ वो आपकी फरमाइशों पर गीत आप सभी को सुनाएंगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी से लेती हूं इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, मैं आपसे कह रही हूं कि आप इसके बाद आपकी फरमाइशों का एक लंबा तांता लगने वाला है, जी हाँ। और दोस्तों, अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अगली मुलाकात तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर और गुड नाइट। और जाते जाते आप सभी के लिए लुटेरा फिल्म का ये मधुर गीत, तराना, प्यार भरा तराना आप सभी के लिए छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: यादों की बारात।

107 FM रेनबो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति और रहूंगी पूरे एक घंटे तक, और इसमें रहेगी बातें, मुस्कान, यादों और संगीत का एक खूबसूरत सफर लेकर।

आज इस कार्यक्रम में आप अपने पसंद के गीत भी सुन सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए बस आपको करना होगा डायल 2213-1341। जी हाँ, बस एक इस नंबर को डायल कीजिए और जुड़ जाइए हम तक।

0: वक्त हो चला है 8:10 और 38 सेकेंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 6 लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ, और अभी ये कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो हमारे साथ देखते हैं पहले कॉलर कौन है। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मेरा नाम है शुभजीत, मैं बिलगढ़िया से बात कर रहा हूँ।
0: हाँ शुभजीत, बताइए कैसे हैं आप? कैसे बीता आपका दिन आज का?
1: बारिश हो रहा है थोड़ा सा।
0: हाँ जी,
1: कई जगह में तो बारिश हो रहा है, फिर कम जा रहा है, फिर से शुरू हो जा रहा है।
0: ओके,
1: ठंडा तो नहीं लग रहा है ऐसा, मतलब ठंडा का तो माहौल नहीं बना, लेकिन और भी ज्यादा गर्मी हो
0: रही है। वो तो है, पर चाय गरम गरम इस माहौल में अच्छी भी लगती है, गरम गरम, है ना
1: जी। और संडे का एक चीज ये है कि जितना टाइम बीते, मतलब शाम के टाइम में, और भी मंडे ब्लूज आ जाता है उसका। कल से फिर से ऑफिस, फिर से काम, फिर से, मतलब वो जो चीज है सबका, मतलब फ्राइडे में जो मस्ती होता है।
0: हाँ जी, पर कल तो आई थिंक छुट्टी है, है ना?
1: छुट्टी है, लेकिन
0: तो कल तो मंडे ब्लूज नहीं होगा आपको।
1: हाँ, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में तो
0: वो तो है, सही बताइए।
1: लेकिन अब ये गाना, मतलब शाम के टाइम में ये जो 8 से 9 का जो वक्त है,
0: हाँ जी,
1: यहाँ पर इतने बढ़िया गाना बजता है, चाहे वो अभी का हो या 80s 90s का। तो मैं थोड़ा सा उस तरफ हूँ, मतलब 80s 90s के टाइम का, तो मुझे उस तरह का गाने, इवन 70s 60s 70s का गाने भी, मतलब
0: वो एवरग्रीन गाने होते हैं एकदम।
1: वो गोल्डन टाइम था, अभी तो गाना याद भी नहीं रहता है। एक बार सुनता हूँ थोड़ा, मतलब 100 गाने में से शायद 2-3 गाने होंगे जो याद रहता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उस जमाने के गाने अभी भी अगर प्रील्यूड चले,
0: हाँ जी,
1: तो पता चल जाता है कि वो क्या,
0: कौन सा गाना बज रहा है, बजने वाला है। हाँ जी,
1: ना हो कि म्यूजिक डायरेक्टर या लिरिसिस्ट कौन है, लेकिन एक्चुअली किसने गाना गाया है वो थोड़ा थोड़ा अंदाज में आ जाता है।
0: एकदम सही कहा आपने। तो चलिए, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: आज में 1989 में रिलीज हुआ था परिंदा।
0: ओके,
1: उसमें आशा भोसले और सुरेश वाडकर की जो एकदम बेमिसाल गाना है।
0: हाँ जी,
1: मिलकर
0: बिल्कुल,
1: वो मुझे सुनना।
0: तो चलिए आपकी फरमाइश पर ये बेहतरीन गीत सुनते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय।

107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ, और आप सुन पा रहे हैं कार्यक्रम डिजिटल मोड पर, साथ ही न्यूज ऑन एयर ऐप पर। वैसे एक शेर याद आ रहा है मुझे, कहते हैं कि हंसते रहिए जनाब, यही पहचान है आपकी, वरना जिंदगी तो हर किसी को रुला देती है। कहते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत बड़ी वजह नहीं चाहिए, कभी बारिश की पहली बूंद तो कभी पुराने दोस्त का फोन, तो कभी गर्मा गर्म पकौड़े, तो कभी रेडियो पर बजता हुआ आपका मनपसंद गीत, बस दिन बन जाता है। वैसे एक सवाल करूं मैं आपसे, क्या आपको भी बचपन में बारिश शुरू होती कागज की नाव बनाने का शौक था, या फिर छत पर जाकर भीगने का? आज भी जब बारिश होती है ना, तो मन कुछ पल के लिए फिर से बच्चा बन जाता है। फिर से एक शायरी कह दूं, बहुत मन कर रहा है कहने का। बरसात की बूंदी जब धरती पर उतरती है, यादों की खिड़कियां भी धीरे धीरे खुलती हैं। कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छह लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ, और उम्मीद है कि ये गीत आपको आपके दिल को उतना ही सुकून दे गया होगा जितना कि हमें। कहते हैं कि जिंदगी की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो जाए, लेकिन कुछ पल ऐसे जरूर निकालिए जो सिर्फ आपके अपने हो। एक प्याली चाय, किसी अपने से दो बातें, या फिर रेडियो पर बजता कोई पुराना गीत जैसे हम बजा रहे हैं, ये छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को बड़ा बना देती है ना। वक्त की रेत पर सबके निशान मिट जाते हैं। जी हाँ, वक्त की रेत पर सबके निशान मिट जाते हैं, लेकिन अच्छे लफ्ज और अच्छी यादें हमेशा रह जाती है। एक मजेदार बात तो जो आजकल हमारी जिंदगी में चली रही है, जैसे कि पहले लोग मिलते थे तो पूछते थे कि भाई कैसे हो, अब पूछते हैं नेट चल रहा है ना, और अगर वाईफाई आपके घर का चला जाए तो पूरे घर के सदस्य पहली बार एक दूसरे को देखने लगते हैं, है ना। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि हंसने से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो तनाव कम करने में मदद करते हैं, यानी कि मुस्कुराना सिर्फ आदत नहीं सेहत की दवा भी है। इसलिए आज, जी हाँ आज, कम से कम 3 लोगों को मुस्कुराने की वजह जरूर दीजिए।

आप सुन रहे कार्यक्रम छाया लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। वक्त उछले हैं 8:33 और 9 सेकेंड। तो जीना इसी का नाम तो है, पर कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि अपनी बचपन से भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? पुरानी तस्वीरें निकालिए, पुरानी डायरी पढ़िए, या फिर कोई ऐसा गीत सुनिए जिसे सुनकर आपको लगे अरे ये तो मेरी ही कहानी है। कुछ रिश्ते किताबों जैसे होते हैं, है ना? जितना पढ़ो उतने ही खास लगते हैं। चलिए एक सवाल मैं फिर आपसे करूं। मैं जान रही हूं कि मेरी आपसे अभी बात नहीं हो पा रही, बट मैं सवाल कर रही हूं, आपको सोचने का मौका दे रही हूं कि अगर आपको पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने लिए मिले, यानी आप सारा दिन भर काम कर रहे हो और सिर्फ 10 मिनट कहा जाए कि सिर्फ आप अपने लिए जियो, तो आप क्या करेंगे? चाय पियेंगे, किताब पढ़ेंगे, संगीत सुनेंगे, या फिर बस चुपचाप बैठकर खुद से बातें करेंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि कभी कभी सबसे ज़रूरी मुलाकात खुद से होती है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ चलिए आज फिर जी लेते हैं, है ना?

सुन रहे हैं FM रेनबो और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति लेकर कार्यक्रम शाया लोग। उम्मीद है कि आपको हमारा साथ पसंद आ रहा होगा। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है बिना कुछ कहे, है ना। सुबह का उगता सूरज कहता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है, ढलती शाम कहती है कि हर सफर का एक खूबसूरत पड़ाव भी होता है, और रात, जी हाँ रात भी हमें कुछ सिखाती है। सिखाती है थोड़ी सी शांति भी जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितनी की भाग दौड़। मंजिल से पहले रास्तों का शुक्रिया करना, इन्होंने ही तो चलना सिखाया है। जिंदगी से पहले मुस्कानों का शुक्रिया कहना, इन्होंने ही तो जीना सिखाया है। एक आदत जो शायद हम सब में है, जब कोई पुराना गीत बजता है तो हम कहते हैं अरे ये तो मेरा पसंदीदा गीत है। फिर दूसरा गीत आता है, वो भी हमारा मनपसंद गीत निकल आता है। शायद गीत नहीं, उनसे जुड़ी यादें हमारी पसंदीदा होती है। किसी सफर की, किसी दोस्त की, किसी त्योहार की, या फिर जीवन के किसी खास मोड़ की। एक बात और कहूं, हम अक्सर कहते हैं कि समय बहुत तेज भाग रहा है, लेकिन सच तो यह है कि घड़ी आज भी उतनी ही गति से चलती है। बदलती है तो बस हमारी जिम्मेदारियां। इसलिए कभी कभी घड़ी को नहीं, खुद को थोड़ा सा विराम देना बहुत बहुत जरूरी होता है। शायद कल हो या ना हो,

सच में कल हो या ना हो किसने जाना है। सच में ऐसा ही लगता है ना कि बचपन में हम बहुत जल्दी बड़ा हो जाना चाहते थे, है ना। बड़े होकर अब अपने बचपन को ढूंढते रहते हैं। जीवन सच में कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना। चेहरे की मुस्कान संभाल कर रखिए, क्योंकि यही सबसे सस्ती और सबसे कीमती दौलत है। हम सब अपने अपने सफर में व्यस्त हैं, लेकिन अगर रास्ते में किसी को एक मुस्कान दे सके, किसी की बात धैर्य से सुन सके, किसी का धन्यवाद कर सके, तो यकीन मानिए दिन और भी सुंदर हो जाता है। क्योंकि अच्छाई जो है ना, उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? वो लौट कर जरूर आती है। तो सुनिए और कहिए।

आप सुन रहे हैं छह लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। देखते ही देखते हमारा साथ अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला है। कहते हैं कि अच्छे पलों का पता ही नहीं चलता है ना, कि कब बीत गए। वक्त भी हो गया है, 8:52 हो चुके हैं और आज की इस मुलाकात में हमने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की बात की, मुस्कानों की बात की, याद की बात की और उन पलों की बात की जो शायद साधारण होते हुए भी सबसे खास होते हैं। जिंदगी की किताब में हर दिन नया सफ़ा है, जिंदगी की किताब में हर दिन नया सफ़ा है, जो मुस्कुरा कर पढ़ ले वही असली फलसफा है, है ना। हम अक्सर किसी बड़ी खुशी का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सुबह की पहली चाय, घर वालों की हंसी, किसी दोस्त का संदेश या रास्ते में किसी अनजान चेहरे की मुस्कान, यही तो जीवन की असली खुशियाँ हैं। इन्हें महसूस कीजिए, सहेज कर रखिए और जितना हो सके बांटते चलिए। और वैसे भी किसी ने बहुत ही खूबसूरत सा कहा है कि शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका चुनाव तय करता है कि उनकी कीमत क्या होगी। इसलिए जहां तक हो सके ऐसे शब्द बोलिए जो किसी का दिन बेहतर बना दे। लबों पर मीठे बोल रहे, दिल में सच्चे भाव रहे, रिश्तों की खुशबू यूं ही महके, जीवन में ऐसे पड़ाव रहे।

0: दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: आप सुन रहे हैं छायालोक अपनी दोस्त प्रीति के साथ, और वक्त हो चला है 8:58:30। और चलिए जाते जाते एक बात बता दूं, कभी कभी कुछ देर के लिए ना मोबाइल को आराम दे दीजिए और अपने आसपास की दुनिया को देखिए। बच्चों की खिलखिलाहट, बारिश की बूंदी, पेड़ों की सरसराहट या फिर शाम की ठंडी हवा, प्रकृति रोज हमें कुछ नया सिखाती है, है ना। जाते जाते बताऊंगी, चलते चलते बस इतना सा पैगाम छोड़े जा रही हूँ कि जहाँ भी रहें मुस्कान आपके साथ रहें, जिंदगी मिले तो ऐसी मिले, हर सुबह नहीं हर शाम उम्मीदों का सलाम छोड़े जा रही हूँ। इसी के साथ आपकी दोस्त प्रीति आप सभी से कहती है टाटा बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: 90s Gaming Zone.
1: 90s Gaming Zone. 90s Gaming
0: Zone. Nostalgic 90s.
1: Nostalgic 90s.
0: এখন তোমার রিকোয়েস্টের গান,
1: এখন তোমার রিকোয়েস্টের গান।
2: वडोदरा गुजरात थेके बाजीगरेर एई गानटा शुनते चेयेछेन हरे कृष्ण काश्यप रइलो 9903659992 ते गानेर रिक्वेस्ट अवश्यई 90 दशकेर गानेर रिक्वेस्ट तुमिओ करते पारो संगे निजेर नाम आर शर्ट लोकेशनटा लिखबे आर पाठाबे एसएमएस करे अथवा व्हाट्सएप करे